तेरा असम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। लुक ये मेरा असम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना सा जहाँ की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा तो आशिक सरेंडर हुआ।

किया हो वीर ऐसी बढ़ेगी तुझे तो गलती है ऐसी कैसी मैंने ही बनता जो देखा तुझे सपनों में अच्छे से तो देख जो आगे आगे साफ बने ले आगे आगे वीर अब करना कोई वीर आज बनेंगे खल के बेबी अब टंटा क्लियर।

0: सच सच बताओ, उस दिन गन अपने सर पर क्यों रखी?
1: पता नहीं, सिक्स सेंस, इंट्यूशन। मुझे बस इतना पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। आई बिलीव इन यू।
0: पर